एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्टी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपी सिटी आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात